बिमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा बोर्डले विभिन्न 202 सेवा प्रदायक अस्पताललाई थप 91 करोड़ 18 लाख 94

तदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदुखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वा वा

हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर डॉन हैं। इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोलते थे पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो।

0: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज़
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक फीचर फ्रॉम सारेगामा।

फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको, चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।